नानक ओ अपरस सगल निस्तारे अष्टपति मिथ्या नाही रसना प्रसमा में प्रीत नरंजन दस पर त्रया रोपना पेखे नेत्र साखित संसंगेत करना सुन कहूं की निंदा सत्य जने आप को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरि मन की वासना मन ते डरे इंद्री जे पै धोते रहतना कोट मधे को सा परस वैष्णव सज सो परसो प्रसन्न विष्णु की मां ते पिन कर्म कर तो मैंने करो तिस वैष्णव का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह के ऊपर की तन संग्राच मंत्र सुन गोपाल सौ प्रो कृपाल आप दृढ़ नाम जपावे नानक वैष्णव परम गल पावे भगवती पवन पवत्कार सत्याग दुष्ट गासम मंत्र विषय सगला परम कर पूजा सगल पार्वम सात संग पापा मल खोवे सत भगवती की मात उत्तम होवे पवत की डाल करे न क्रीत मंत्र विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा पोती पवन को पावे सो पंडित जो मन प्रभु दे राम नवा तुम सुद राम नाम सारस पीवे पंडित कह दे जा जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण स्मृत भुजे मो सुख मैं जाने असुर चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा दे बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत हो सात सा पावे धन कोई कर कृपा अंतर तारे पश्चिम पाथर को तारे सब रोकाय खुद नाम करे आर मंगल गुण गाम काहू जो कित ना पाई है तम नान तिस्मरे जिस लिखिया तुर

कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बाम प्रणव दासी, कई कोट वेद के सोते, कई कोट तपिस्वर होते।

कई कोर कर पण कठोर कई कोड़ा फेगा तमने कोर कई कोड़ पर दल को है कई कोड़ पर दुख न कर है कई कोट माया शर्मा है कई कोट प्रदेश प्रमाए जिज लाओ तरना नार करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्पो पाए कई कोट पाथर वृख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सुर नखत्र कई कोट देवदान इंद्र सरशतर सब समोरी अपने सो तारे नान जज पावे तेत निस्तार कई कोट राजस तामस सात कई कोट वेद प्रसिमृता शास्त्र कई कोट कीर्तन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट किए चल जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जाकर प्रसाद कई कोट भूत प्रे शोकर मृगात सब ते नेरा सो ते दूर नानका कलिपत रया परपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरसुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट बहुत जोनी फिर है कई कोट बैठते खाएं कई कोट कहले थक पाएं।

कभू हो पंडित करे बखियान कभू मोहन तुहारी लावे ध्यान कभू तर तीर्थ स्नान कभू से साधन हो ज्ञान कभू की रस पतंग हो जियान कजोर पर में परमिया नाना रू जो स्वागी दिखावे जो प्रपावे तुम चावे जो सुपावे सो

भौ लश्कर मान खूब पर करयास पल पीतता का होए विनाश सत आओ जाने बलवंत खिर में होए जाए पसमन किसी न बदे आप अहंकारी धर्म राय तस्करे खुआरी।

0: मैं समय हूं। जब जब संसार में अधर्म व पाप बढ़ता है, तब तब भगवान को धर्म की पुनर्स्थापना हेतु व अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में विभिन्न रूपों में अवतार लेते मैंने देखा है। आज मैं द्वापर युग में हूं और आज का दिन बहुत विशेष है। आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के दरबार में पांडवों का अंतिम प्रस्ताव देने के लिए पधार रहे हैं, जिससे कि पांडवों को न्याय मिल सके और एक भयंकर युद्ध टल जाए। आइए देखें।
1: सावधान, द्वारकाधीश यदुनंदन श्री कृष्ण दरबार में पधार रहे हैं।
0: वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए।
2: हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं जो प्रस्ताव लेकर आया हूँ उसे ध्यान से सुने। मुझे आशा है कि आप पांडवों के साथ न्याय करेंगे। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे।
3: असंभव, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं। पांडवों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक जितनी भूमि भी मैं अपनी हस्तिनापुर से नहीं दूंगा। सैनिकों, इस ग्वाले को ही बंदी बना लो, अब पांडव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे।
0: दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
4: जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।

यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाग, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, उज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरू पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने।

वो लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है।

0: हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भुषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा।
1: थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय जय जय जय।

0: आइए अब हम कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहां दोनों तरफ कौरवों व पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण के साथ आता है। जब वह अपने सामने युद्ध के लिए अपने गुरुजनों भीष्म पितामह व अन्य संबंधियों को देखता है तो वह चिंता में पड़ जाता है। आइए देखें।
1: हे मधुसूदन, कृपया मेरा संशय दूर करें। मैं अपने पूजनीय भीष्म पितामह व अपने गुरुओं पर किस प्रकार बाण चला सकता हूँ? मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? अपने गुरुजनों व धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके मैं भी जीना नहीं चाहूंगा। हे कृष्ण, निराशा ने मुझे घेर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
2: हे कुंती पुत्र, इस युद्ध के समय तुम्हारी बुद्धि में ये कायरता के विचार क्यों आ रहे हैं? तुम्हारी चिंता व दुख तुम्हें शोभा नहीं देती। आज मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो मैंने इस सृष्टि की रचना के आरंभ में सूर्य को दिया था।

ए पार्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। कर्म फल की इच्छा कभी न करो, निष्काम भाव से कर्म करो। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कर्म ही ना करो, अपने सभी कार्य मुझे समर्पित करके करो।

हे केशव, मैं किस प्रकार निष्काम होकर अपने सभी कर्म आपको समर्पित करूं? कर्ता का भाव तब भी मुझ में रहता है।

0: गणः।
1: हे कुंती पुत्र, तुम अपने मन को मुझ में स्थिर कर दो, मेरा चिंतन मनन करो, मेरे भक्त बन जाओ, अपने मन वचन व कर्म मुझे अर्पण कर दो, समर्पित भाव से मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझसे एकात्म स्थापित करते हुए तुम मुझे ही प्राप्त करोगे।

0: शोचः।
1: हे अर्जुन, अपना अहंकार, अपने होने का भाव सब भूलकर तुम मेरे द्वारा निर्देशित कार्य करो। धर्म क्या है और क्या नहीं, इस विचार को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो, मेरे शरणागति हो जाओ।

हे केशव, ईश्वर कब और क्यों अवतार लेता है? वह यह निर्णय कैसे करता है कि अब उसे अवतरित होना है?

हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और सदाचार कम हो जाता है तथा अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तब मैं अपना सृजन करता हूँ। मैं अवतार लेकर स्वयं को प्रकट करता हूँ।

हे माधव, अवतार धर्म की पुनर्स्थापना किस प्रकार करता है? आप अपने भक्तों का उद्धार किस प्रकार करते हैं?

ए पार्थ, साधु व सज्जनों की रक्षा व उद्धार करने के लिए तथा जो सत्य का पालन करते हैं व ईश्वर में आस्था रखते हैं, मैं उनका कल्याण करता हूँ। दुष्ट कर्म करने वाले दुष्टों का मैं विनाश कर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ।

0: हे केशव, मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। मैं अब वैसे ही कर्म करूंगा जैसा आप चाहते हैं। करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव।
1: तो उठो महाबाहु, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो।

भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिए अपने वचन का पालन करते हुए अब कलयुग में धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अपने भक्तों के रक्षण के लिए व उद्धार करने के लिए भगवान श्री सत्य साई बाबा के रूप में जन्म लिया है।

भगवान श्री कृष्ण के पास तो केवल एक ही अर्जुन था। आज हम सब बाल विकास के बच्चे व सभी भक्त भगवान श्री सत्य साई बाबा के अर्जुन ही तो हैं। हम सभी वैसे ही कार्य करेंगे जैसा कि भगवान श्री सत्य साई ने हमारा मार्गदर्शन किया है।